अशत कोलंगा उम उपे तेलिखिंग हिंचुका उये लेओ उपेते हो केनिविचुआ माचुचेतां आस्ताबादा।